0: कम्युनिटी की आवाज है, बस एक ही आवाज है। आप समात फरमा रहे हैं इंस्पायर एफएम 105.1।
1: Inspired. Inspire FM. I have

उसको बचाना और ईमानी अखुवत की बुनियादों पर उन दोनों के दरमियान मुसालहत की, रिकॉन्सिलिएशन की अमदरदाना कोशिश करना, इसकी हमें कुरान अजीज की इस सूरह मुबारका के अंदर तलकीन की गई। फिर अगली स्टेज में जो दूसरा मरहला आता है, इसमें उन छह बुराइयों से हमें सख्ती के साथ मना कर दिया गया, जिनकी वजह से आम तौर पर इंडिविजुअली अफराद के दरमियान या मुख्तलिफ जमातों ग्रुपों के दरमियान उल्फत का, महब्बत का रिश्ता कमजोर पड़ जाता है। और फिर जब वो महब्बत का रिश्ता कमजोर पड़ता है तो इसकी जगह नफरत, अदावत, इस तरह की जो खराबियां हैं उनकी जड़ें मजबूत से मजबूत तर होती चली जाती हैं। और फिर दिलों के अंदर कदूरत, एक दूसरे के लिए तलखी पैदा हो जाती है जो खत्म होने का नाम नहीं लेती। इसकी वजह यह है कि जब दिलों के अंदर नफरत के ये बीज बो दिए जाते हैं, फिर वो एक तनावर दरख्त बनता है। फिर उसके बाद होता क्या है कि लड़ाइयाँ, झगड़े, फसादात, कत्ल वारत, इस किस्म की समाजी बुराइयाँ मार्ज वजूद में आती हैं। और अरबी का एक मकबूला भी है कि तलवार से लगा गया जख्म हो सकता है कि वक्त के साथ साथ मुंतमिल हो जाए, लेकिन जबान से लगा हुआ जख्म बजा औकात सारी जिंदगी नहीं जाता। जब वो बंदा सामने आता है तो याद आ जाता है इसने मुझे ये कहा था। इसलिए जबान का इस्तेमाल एहतियात के साथ किया जाए। बोतान, गीबत और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इंसानों के मुआशरे के अंदर खुसूसी तौर पर बाहमी मुसलमानों में नफरत और अदावत पैदा करती हैं, उनसे इज्तनाब किया जाए। अब अगली बात ये कि जिस तरह हमने अर्ज किया कि छह बुराइयां हैं जिनसे सख्ती के साथ हमें मना किया गया, पहले जमाली तौर पर उनका तज़करा करते हैं और फिर कोशिश होगी कि तफसीली तौर पर अवेलेबल टाइम के अंदर उन पर कुछ न कुछ गुफ्तगू की जाए। और ये हिदायत अल्लाह की तरफ से अता फरमाई गई, ये रहनमाई अल्लाह की तरफ से अता फरमाई गई जो हमारे एक एक बॉडी सेल को पैदा करने वाला है, हमारी साइकी को जानता है और माशरे के अंदर ज़माना कोई भी हो, आज से 1500 साल पहले का ज़माना हो या 1000 साल बाद का ज़माना हो या जिस ज़माने में हम जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, हमारा ज़माना हो, हर दौर के अंदर इंसानों के लिए ये चीज़ें जहर कातल रही हैं जिनसे हमें मना कर दिया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुसलमान माशरों के अंदर ये जो बुराइयां अभी मैं जिक्र करने लगा हूँ कुरान अजीज की रोशनी में, सूरह अल हुजरात की इन आयात की रोशनी में, वो हमारे लिए सुहाने रूह बनी हुई हैं। लेकिन मजाल है कि अल्लाह के कुरान की इन तालीमात पर अमल करते हुए कम अज़ कम हम अपने आप को बचाने की कोशिश करें। कोशिश ही नहीं करेंगे तो बचेंगे कैसे। चलो आगे चलते हैं। उनमें से छह बुराइयों में से पहला तमस्खर। तमस्खर यानी एक दूसरे का मजाक उड़ाना। दूसरे नंबर पर बयान हुआ ऐब जोई और तोहमत। तीसरा दूसरे लोगों के तौहीन आमेज नाम रखना और तौहीन आमेज अंदाज के अंदर उनको बुलाना, उनको पुकारना। नंबर चार किसी के बारे में बदगुमानी करना, वैसे ही बैठे बैठे अपना माइंड मेकअप कर लेना, ओ जी फलां ऐसा है, फलां ऐसा है, ना कोई सबूत ना कोई

0: زباں اب تک تیری لہروں کے دوش پہ آواز کی اس خوبصورت رشے سے منسلک ہم اور آپ رہتے ہیں چومس کا نام ہے بول کلب آزاد تیرے جناب والا. آپ تمام لوگ سن رہے ہیں ریڈیو آزاد وے یور وائس میرز. آپ کا پیارا راز دلارا بانکا سجیلا ریڈیو آزاد. آج 14ویں سالگرہ ہے ریڈیو آزاد کی اور بہت سارے مزیدار صبح سے لے کے اب تک ہم کئی ہمارے کام تھے جو ہم نہیں کر پائے کیونکہ آج ایک اسپیشل سیلیبریشن چل رہی ہے ریڈیو آزاد کے سوشل میڈیا پہ بھی ہمارے براڈ کاسٹ پہ بھی اور جتنے لوگوں کو ہم نے آسانیاں فار دیئر ایئرز اینڈ آسانیاں فار دیئر آئیز پیدا کی ہیں ان کے رسپانس آل اوور دا ورلڈ نیپال سے لے کے کینیڈا یو ایس اور ہر انگلینڈ ہر جگہ سے مبارکبادیں ہم وصول کر رہے ہیں صبح سے. اور جب یہ ایسی کوئی چیز ہو تو پھر باقی ساری چیزیں پینڈنگ میں چلی جاتی ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ دن آپ لوگوں کے لیے بھی اتنا ہی خوبصورت. موسم بڑا اچھا ہے, اندر کا موسم بھی اچھا ہے, 14 سال کی محنت کے رنگ لانے کا بھی اور بہت ساری نئی چیزیں سیکھنے سکھانے کا بھی. ایک پلیٹ فارم ریڈیو آزاد جس پیار محبتوں دعاؤں جتنی عزتیں پیار محبتیں اور دعائیں ہمیں ملی ہیں اس کے اگر ہم ڈالرز بنا دیں تو میرا خیال ہے ہم بلینئر ہو جاتے ہیں لیکن سوشل بزنس ہونے کی وجہ سے اس کے علاوہ سارے کام ہو گئے. تو چلیے آج کا یہ شو شروع کرتے ہیں جی. 9725019390 واٹس ایپ نمبر میں تھوڑا سا پرابلم چل رہا ہے تو جو لوگ بھی واٹس ایپ پہ کال کر کے بات کرنا چاہتے ہیں وہ تمام لوگ مہربانی کر کے جن کے پاس میرا سیل فون نمبر ہے اس کے واٹس ایپ کے اوپر آپ لوگ کالز کر سکتے ہیں تو میں وہاں سے بھی آپ کو آن ایئر لے سکتا ہوں آسانی پیدا کرنے کے لیے. اور ہماری فون لائنز تھوڑا سا آج کل بیہیو نہیں کر رہی, اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. دو لائنز بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, وہ ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو لیتے رہیں گے اور ساتھ ہی جو ہمارے واٹس ایپ کا نمبر ہے جن کے پاس بھی ہے وہ لوگ بھی ساتھ ساتھ آتے رہیں گے. آج کا پہلا لکی کالر دیکھتے ہیں جی کون ہے. سرپرائز ہے, ریڈیو آزاد یور آن دی ایئر.
1: کیسے
0: آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک, بالکل ٹھیک ٹھاک.
1: بس کنگریچولیشن 14 سال.
0: تھینک یو سو گریٹفل, تھینک یو ویری مچ. اسی بہانے آپ کی آواز آن ایئر آ گئی لکی, اور ساتھ اور ساتھ سگنیچر ہنسی بھی آ گئی.
1: پلانیٹری الائنمنٹ سب ٹھیک ہے آج ایسا لگ رہا ہے.
0: یہ میرا خیال ہے پلانیٹری الائنمنٹ کا ایک واٹس ایپ براڈ کاسٹ ہوتا ہے. یہ آج کل ہم نے نیا کام شروع کیا ہے, میں لوگوں کی گڈ ول پہ رہنے کے بجائے میرا خیال ہے ان کو نا خبردار کرتے رہنا چاہیے ساتھ ساتھ. اس طرح مجھے بھی آسانی ہوتی ہے سسٹم بنا کے, لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے. بٹ سو
1: جو بھی ہو پلانٹ الائن ہو جائے ویدر اٹس تھرو خبرداری یا سمتھنگ ایلس اٹ ورکس.
0: یہی تو چل رہا ہے پچھلے 14 سال سے ہوشیاری خبرداری,
1: بس اسی لیے تو 14 سال تک پہنچ گئے آپ.
0: ہاں جی, اور پتہ بھی نہیں چلا.
1: پتہ بھی نہیں چلا, سچ مچ ٹائم فلائز when you're having fun.
0: ہاں جی, اور اگر آپ کوئی چیز ایسی چلا رہے ہوتے ہیں بنا کر لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں تو لگ پتہ جاتا ہے, اور جب ویسے دیکھنے میں لگتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلا اور 14 سال گزر گئے.
1: That's a very good observation actually, because سچ مچ پتا نہیں چلا. اور مجھے ہی لگتا ہے کہ میں وہ 14 سال کی جرنی میں, میں 13 سال تو ہوں آپ کے ساتھ, تو وہ بھی کیسے گزر گئے یہ نہیں پتا چلا.
0: مجھے آج بھی وہ آپ کی پہلی والی میٹنگ, اور ایکچولی آج کل اسٹوڈیو کا ڈیسک جہاں پہ ہے اور جہاں سے یہ سب آپریٹ ہو رہا ہے وہ اس زمانے میں کانفرنس روم ہوا کرتا تھا. اٹس دی سیم ایگزیکٹ سیم ویری پلیس وی آر سٹنگ وی یو کیم ان فار دی فرسٹ ٹائم. اور اسی دن
1: اور آپ نے لیفٹ رائٹ کر دی تھی میری, آئی ریمبر ویری ویل.
0: نہیں اس سے پہلے آپ اتنا کچھ دنیا میں کر رہی تھی تو میں تھوڑا سا سسٹم کو ہلاتا ہوں بندے کی تاکہ جو مجھے جا کے جو مجھے چاہیے وہ مجھے مل سکے. سائلی جی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کا, راگو کا. آپ لوگوں نے بہت خوبصورت ریڈیو آزاد میں رنگ ایڈ کیے اپنی پریزنس سے, اپنی پروگرامنگ سے. جھوم برابر جھوم میں آپ نے برابر جھمائے رکھا ہمارے تمام لوگوں کو. بیچ میں آپ نے ماشاء اللہ ڈگریز بھی کیں, اب آپ اور زیادہ پروفیشنل کنسلٹنٹ بھی ہو گئی لوگوں کے دماغ کی جو کھڑکیاں کھولنے اور روشن دانوں میں سے ہوا گزارنے کے لیے. تو اس سارے اور بیچ میں آپ کی زندگی میں بہت ساری چینجز آئیں جو میں نے ہوتے ہوئے دیکھے. چھوٹے چھوٹے بچے میں نے بڑے ہوتے دیکھے ماشاء اللہ. آج کل جب میں ان کو کبھی کبھی فیس بک پہ دیکھتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے, یہ ہماری وہی قوم ہے جو بچے بڑے ہو گئے ہیں لیکن بڑے ابھی تک بڑے نہیں ہو سکے.
1: جی بالکل ٹھیک بات ہے.
0: تو اس جرنی میں یو ہیو گیون سو مچ ٹو اس اینڈ وی ہیو انجوائڈ یور کمپنی, آپ کی ہنسی آپ کی باتیں اور آپ کی پریزنس, اور راگو جہاں جہاں بھی اس نے سپورٹ کیا ہمیں ہمیشہ یاد رہتا ہے. سو ویری گریٹفل فار آل دی ٹائم دیٹ یو ہیو اسپینڈ ود اس.
1: ویل آئی اپریشیٹ دیٹ یو گائز ہیو دس پلیٹ فارم فار اس اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. اتنی یو نو جب ہم کہتے ہیں کوئی پلانٹ बढ़ता है, बट यू नीड दैट फर्टाइल सॉइल फॉर दैट प्लांट टू सक्सीड एंड रियली प्रोवाइड शेड फॉर अदर्स. सो आई रियली अप्रिशिएट कि आपने वो फर्टाइल सॉइल तैयार की है, एंड इट्स ऑलवेज बीन अ वंडरफुल जर्नी सो फार, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट 14.
0: So grateful. 28 साल जब पूरे होंगे जनाब, तो ये एक्चुअली जो मट्टी और ये सारा जो बेड बनाया गया सारा कुछ, क्योंकि हमने तो शुरू में चीज़ की एक दाग बेल रखी, फाउंड होगी एक चीज़ और उसके बाद यू नो एक्सीडेंटली हुआ और उसके बाद काम चल पड़ा, लेकिन उसके बाद इस मट्टी को मैं सिर्फ उसकी कभी कभी आके गोडी करता हूँ, ऊपर नीचे कर देता हूँ मट्टी को, बाकी सारे का सारा जो एक्चुअल जो क्रेडिट जाता है वो आयशा जी का है. और उसके बाद जो आहिस्ता आहिस्ता फिर हमारी टीम आती रही, वो रंग बिखेरती रही और इन सबको साथ चलाने का, और इस बहुत बड़ा सेहरा जो है वो कुछ 3-4 लोग हैं जिनको मैं आज क्रेडिट भी देना चाहूँगा, उनकी वजह से है. जो हम बन पाए वो भी उनकी वजह से, जो नहीं बन पाए वो भी उन्हीं की वजह से है. तो इसीलिए ये क्रेडिट उनको ही साथ साथ देना चाहिए, मैं भी इसमें आता जाता हूँ ताकि ये चीज़ों को मैं देखता रहूँ और हम किसी विजन के ऊपर चलते रहें. सो ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच. मेहरबा हमारे साथ रेडियो आज़ाद यू ऑन द एयर.
2: जी अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम सलाम.
2: हमने कहा टीन एज में शामिल हो गए, एंटर हो गए रेडियो आजाद वाले.
0: अब 14 से लेके 19 साल तक जो हमारा जो बंदे बच्चे का भी जो बिल्कुल सब बदल जाता है, तो इंशाल्लाह मेरा भी हमारा भी यही प्लान है कि 14 साल के बाद बच्चा बड़ा हो गया तो अब ये बड़ों की तरह सोचेगा, बड़ों की तरह करेगा. इसके सिस्टम जो है इंशाल्लाह जो हमने सीख लिया है समझ लिया है, अब इसके टेक ऑन करने का, दुनिया को टेक ऑन करने का टाइम आ गया.
2: बिल्कुल बिल्कुल. अब मैं कह रही हूँ कि आप शेक इसलिए करते हैं कि सितारे अलाइन हो जाए.
0: हाँ जी, वो मुझे हिलाना हिलूना पड़ता है ताकि थरथली मचानी होती है ना, वो यार नहीं आनिया जानिया होती है महफिल में, तो पता चलता है कि महफिल जिंदा है.
2: बिल्कुल. मैंने कहा आप 14 साल की अभी साहिली जी बात कर रही थी, हमने कहा जिंदगी गुजर गई, पता ही नहीं चला.
0: ये बिल्कुल ऐसे जो मैंने कहा था ना, खान जी एक दफा मुझसे बात करते करते, वो शेव कर रहे थे तो बात करते करते हम चुप से हो गए शेव करते करते, और मैंने ऐसे पूछ लिया चेहरे का जब रंग बदला था, के गले हाँ जी यानी क्या बात, तो कहते हैं यार मुझे पता ही नहीं चला, आज मैंने शीशे में शेव करते हुए देखा, हालांकि कितनी बंदा शेव करता है, आज मुझे लगा कि मेरे चेहरे के ऊपर इतने सन गुजर गए, इतने साल गुजर गए कि, और बीच में मुझे एहसास भी नहीं हुआ, और आज मतलब 70-75 ये जब आज मुझे लगा है कि मैं बूढ़ा हुआ.
2: जहन जो है वो मानता नहीं है, देख के आप पता चलता है कि यस वक्त की मुसाफत हमने बहुत तय कर ली.
0: असल में रूह की कोई एज नहीं है, और रूह जिस टाइम एंड स्पेस से आया है उसको उसके ऊपर कोई वक्त नहीं गुजरता है, वक्त जिस्म पे गुजर जाता है, वक्त जहन पे गुजर जाता है, और वो उसने इतना ऑक्यूपाई करके हमको रखा होता है, इसीलिए तो 18-20 साल के बंदों की तरह 60-70-80 साल के लोग बिहेव कर रहे होते हैं, और जो 17-18 साल में सजाएं मिल रही होती हैं वो हमें इस उम्र में भी मिल रही होती हैं, क्योंकि हम वो मेच्योरिटी उस तरह नहीं जिंदगी के साथ कर पाए. और यहाँ मेच्योरिटी का मतलब ये नहीं कि आप बोर हो जाएं, बोर बातें करें, बोर कलर्स पहने, लोगों को आप टेंशन दें, परेशान करें, इसमें यह है कि जिंदगी के जो एड अप हुए ईयर्स एक्सपीरियंस के तौर पे आए हैं उनको आपने डील ऐसे किया है कि आपका हंसना खेलना मजाक करना फन जो है, फन के टाइम पे फन करना और सीरियस वक्त के काम पे सीरियस करना, जो 3-4 पिलर्स हैं जिंदगी के, उनको अपने काबू में रखना कि बाकी चीज़ों में आप इन्जॉय कर सकें, लाइट हार्टेड रह सकें, फन क्रिएट कर सकें. जितने लोगों की जिंदगी में फन नहीं है इस वक्त, चाहे वो 50, 40, 60, 70 जितने के भी हैं, ये हमारा कसूर है, हमने चीज़ों को मैनेज नहीं किया. 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैनेज नहीं किया गया, हेल्थ को, रिलेशनशिप्स को, फाइनेंसिस को, या चौथी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी वो हमने बनाई नहीं, मकसद. उस मकसद के पीछे जब हम चलते हैं तो उसकी जो राह पे जब हम लगते हैं तो फिर आपको इस तरह अजीब किस्म की कमज़ोरी नहीं फील होती, मैं कहाँ हूँ, वर्थलेसनेस नहीं फील होती. जो आपको मिला होता है उसको कोई बताने की ज़रूरत नहीं होती किसी को आपको कि आपको क्या मिला. फिर आदमी ये देखता है कि उसमें शुक्रगुजारी में मैंने क्या क्या किया, मैं इस सफ़र में कहाँ तक मैंने कहाँ पहुँचा, मैंने क्या सीखा, मैंने क्या समझा, मेरे अंदर क्या प्रोडक्टिविटी कंस्ट्रक्टिव चीज़ें आईं, और मैंने कैसे अपने डीमंस को कैसे डील किया, अपने कॉम्प्लेक्सेस को, इनसिक्योरिटी को, अपने मसाइल को डील कैसे किया, और अपने गिफ्ट के साथ मैं कहाँ तक पहुँचा. ये वो दिन होते हैं जिसमें आदमी इन तमाम चीज़ों के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है और अच्छा फील करता है, यूफोरिक रहता है.
2: आपकी बात पे दो चीज़ें और ऐड करूँगी.
0: जी जी.
2: एक तो कि लर्निंग और थिंकिंग वहाँ होती है जहाँ आपने कहा ना मिट्टी नरम हो, गोडी की हुई हो, ताकि जरखेजी बढ़े और हवा और दूसरे जो भी है जमीन के मॉलिक्यूल्स और भी इसको ताकत मिले, यानी दूसरे जितने भी हम आसपास से जो जमीन कैच करती है एलिमेंट्स को, तो गोडी करना बहुत जरूरी है जहन की भी और जमीन की भी, वरना फूल नहीं उगेगा। तो सोच का फूल उस वक्त खिलता है। दूसरा एक और भी चीज है कि लर्निंग वहां पे सबसे बेहतरीन होती है जहाँ लोग अच्छे होते हैं, जहाँ एनवायरमेंट अच्छा होता है, जहाँ पे आपको वैल्यू दी जाती है, रिस्पेक्ट दी जाती है और आपकी बात सुनी जाती है। तो वहां पे लोग कंफर्टेबली आके लर्न करना और अपनी राय, अपनी थिंकिंग पेश करते हैं। दूसरा मैंने जो फर्क देखा, पता नहीं 10 साल या 11 साल मुझे हो गए, आई डोंट इवन रिमेम्बर के कौन से साल ज्वाइन किया था, तो मैंने एक चीज मिस करती हूँ कि रेडियो जो है वो टीवी बन गया, जो क्योंकि मेरे जहन में एक, जब आप सिर्फ आवाज का जादू सुनते हैं तो आपके कान जो हैं वो हमतन गोश होके और उसको पूरी तरह अब्सॉर्ब करते हैं। अब हमें दो प्लेटफॉर्म है कि हमें वीडियो भी देखनी है, ऑडियो भी, उसमें हमारी अटेंशन बढ़ जाती है। तो पहले मजा मैं क्योंकि और ज्यादातर ऑडियो पर्सन हूँ, तो इसलिए मुझे वो चीज की कमी अब भी महसूस होती है जहाँ पे, क्योंकि अब प्लेटफॉर्म बदल गए, यू पीपल हैव टू डू दैट, ये मैं नहीं कह रही, लेकिन जो एक रेडियो की अपनी खासियत है उसमें कमी आ गई।
0: आप अगर मुझसे पूछेंगी ना, और मेरी प्रेफरेंस अभी भी ऑडियो है। ये जो ऑडिटरी सेंसेस इंसान को रब ने दिए ना, इसको जो इमेजिन करने की इसके साथ जो पावर्स हैं, जैसे आप किताब पढ़ते हैं तो आप खुद इमेजिन करते हैं, उससे आपकी इमेजिनेशन बढ़ती है, उससे आपकी इंट्रीग में इजाफा होता है, उससे आपकी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होती है, उससे आप डायरेक्टर की तरह खुद चीज़ें क्रिएट करते हैं, उससे आप एक्टर की तरह खुद अपने ऊपर वो चीज़ें होते हुए महसूस करते हैं। लेकिन जब आप वीडियो देख लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो आपने करनी थी अब वो वीडियो आपके लिए कर देता है और इतना सोचने समझने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी क्योंकि वक्त के साथ साथ भी बदलना है, रेडियो में हमने कोई चेंजेस नहीं किए, उसको प्रोग्रामिंग हमने वैसे ही रखनी है, सिर्फ कैमरास वगैरह के साथ हम कोशिश करते हैं, और कोई भी आपको पूरा जो शो है ना वो वीडियो पे भी हम नहीं देते, ताकि 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट के जो क्लिप्स हैं, जैसे आयशा जी के शोज़ के होते हैं, फेसबुक लाइव होता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि विजुअल मीडियम को भी आप केटर फॉर यू नो आप कर सकें, नए ज़माने के साथ भी चल सकें, और जिन लोगों को ये 2 मिनट 3 मिनट के अंदर कुछ लोगों तक बात पहुंचाई जा सकती है, क्योंकि वक्त लोगों के पास कम है, अटेंशन स्पैन वो पुराने ज़माने के रेडियो वाला है नहीं, तो वो हम पहले वो देते हैं, उसके बाद अगर किसी को ये चाहिए तो वो रेडियो ढूंढ लेता है, वो 2 घंटे का शो ढूंढ लेता है, वो मिक्स क्लाउड पे जाके अपने शोज़ ढूंढ लेता है। तो हर उस बंदे के लिए डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स है, ये बंदोबस्त करना भी हमारा काम है, तो वो भी साथ साथ हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोग कंफर्टेबल हो रहे हैं स्क्रीन के साथ, आहिस्ता आहिस्ता ना टाइम लगता है इन तमाम चीज़ों, जितना आप करेंगे उतना ये बेहतर होता चला जाएगा, और इसमें लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, स्पेशली वो जो क्लिप्स हैं। रेडियो आज़ाद पिछले 3 सालों में अगर अपनी जगह पकड़ पाया है, AM/FM ना होने की वजह से भी, डिजिटली भी, और लोगों तक जो पहुंच पाया है, उसमें बहुत बड़ा जो रोल है वो ये जो हम आहिस्ता आहिस्ता डिजिटल की तरफ जा रहे हैं उसका भी बड़ा रोल। रेडियो आज़ाद रौंदी है। वालेकुम अस्सलाम, मुबारकबाद, बड़ी बात है, आज तो बड़ा दिन होगा जो आप तशरीफ लाएंगे जहरा जी।
3: आपकी इतनी बड़ी सेलिब्रेशन और हम ना करें कॉल, आपको पता है मैं जॉब पर हूँ और मैं क्लोजेट में घुसकर आपको कॉल कर रही हूँ।
0: देखिए जिसने करनी होती है ना, वो चाहे क्लोजेट में घुसे, चाहे बाथरूम में घुसे, चाहे गाड़ी में घुसे जाके, जैसे नमाज के लिए हम गाड़ी में घुस के वक्त निकाल लेते हैं, ऐसे लोग जिसने निकालना होता है वो निकाल लेता है वक्त। थैंक यू वेरी मच।
3: वेलकम, क्योंकि मेरी जो इनकी काफी शोर होता है, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, तो मुझे याद नहीं मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे

0: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM. Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
1: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
0: We can also offer guaranteed rental income.
1: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
2: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
3: Rishta Networking is back in a brand new location at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. If you're looking for a spouse in a respectful halal environment, join us for an organized matrimonial networking event designed for serious marriage-minded Muslims. You'll have the chance to meet up to 50 potential matches in a safe, structured and comfortable setting and also enjoy a delicious three-course meal. Join us on Saturday, 12th of September from 11:30 a.m. to 4:30 p.m. at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. Limited seats are available, so register now at rishta-networking.co.uk.
4: The mantis shrimp's supervision. Humans have three color receptive cones in our eyes, but the mantis shrimp has 16. They can see ultraviolet light, infrared light, and even polarized light, meaning they perceive a massive glowing spectrum of colors that the human brain cannot even begin to imagine.
5: Bollywood drama meets Hollywood glamour at Hero Saab, Leighton Buzzard's unique cinematic dining experience. At Hero Saab, we serve star-studded Indian classics, including sizzling street food, comforting curries, and so much more. Whether you're dining in at A5 Watling Street in Leighton Buzzard or ordering for collection or delivery, view the menu and book online at herosaab.co.uk or call 01525 643 929.
6: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK Al Khidmat Foundation has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is I Am Khalid. You are tuned in to the Rise and Shine show with Tariq. Keep it locked.
8: Does your car sound like this on the school run? Want to change that? Then tune in to the Rise and Shine show with Brother T. Sing along to
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is I Am Khalid. You are tuned in to the Rise and Shine show with Tariq. Keep it locked.
8: Does your car sound like this on the school run? Want to change that? Then tune in to the Rise and Shine show with Brother T. Sing along to awesome nasheeds, answer our puzzling riddles, and tell us what you think of our newest event.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
10: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए. ہمارے مسائل ہمارے حالات سے نہیں ہمارے خیالات سے پیدا ہوتے ہیں اور خیالات درست کیے جا سکتے ہیں. میں ہوں آزاد اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب آزاد ہو سکیں اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل سے تو بات کیجیے, کیونکہ اب بول کے لب آزاد ہیں تیرے. اونلی آن انسپائر ایف ایم.
11: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe ji aap bol ke lab azad hain tere.
12: Aur phir maine aahista aahista dekha ki is kitni powerful cheez hai.
10: फिर किताब पढ़ने से मुझे पता चला कि सुनने का ध्यान, ये पहली जो चीज़ बताई गई, ये बहरे हैं और गूंगे और अंधे तो बाद में होते हैं, तो वो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से हम चीज़ों को मिस कर रहे हैं। और सामने थे चीज़ें, रिजल्ट्स सामने थे, बस हाथ मुझे डालना था सिर्फ, लेकिन उसके लिए सोचना था, समझना, एक प्लानिंग की ज़रूरत थी। और जब मैंने वो काम करना शुरू किया तो ज़िंदगी इतनी आसान हो गई, और जैसे जैसे मैं बोलता गया वैसे वैसे मैं अप्लाई करता गया अपनी ज़ात के ऊपर, तो रिजल्ट्स भी आना शुरू हो गया। वो रिजल्ट्स जब लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया, तब मुझे समझ आई रब क्यों उसने हमारे लिए ज़िंदगी को इतना आसान किया हुआ है। रिश्ते आसान काम थे, दुनिया एक आसान काम था, हमने इसको मुश्किल किया, फिर उस मुश्किल को तकलीफ दे हद तक अजाब बनाया, और फिर उसी में से हम कुछ ना कुछ करके समझते हैं कि हमने बड़े कमाल किए। खुद ही अपने रास्ते में खड़े हैं, खुद ही फ्रिक्शन, खुद ही वियर एंड टीयर करते हैं, और उसके बाद हर इंसान जो है वो अपनी पूरी लाइफ का जो पोटेंशियल है उसमें से 2% 5% कहीं पहुँच पाता है। लेकिन इन तमाम नॉन एसेंशियल्स को अगर रास्ते में से हटा दिया जाए, इमोशन को सही तरीके, इमोशन को वीकनेस के तौर पे यूज़ करने के बजाय स्ट्रेंथ के तौर पे यूज़ किया जाए, लॉजिक को, गिफ्ट्स को और लोगों को साथ मिला के अगर जोड़ दिया जाए तो मिरेकुलस इफेक्ट हो सकता है। और वो 2% 200% अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में रिजल्ट्स दे सकता है, और मैंने फिर अपनी ज़िंदगी के 10-15 सालों में वो रिजल्ट्स दिए जो मैं पिछले 25-30 सालों में नहीं दे सका, और स्पेशली पिछले 5 सालों में मैंने अपनी ज़िंदगी को उन इन लाइंस के ऊपर मैं जितना परसेंटेज बढ़ाता चला जा रहा हूँ, जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ, जो कुछ मैं कर रहा हूँ ऑन द एयर, वो उससे रिजल्ट्स मेरे जो हैं पूरी ज़िंदगी एक तरफ और पिछले 5 साल एक तरफ, तो इतना अच्छा रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर दें कि अगर वो ये करना चाहते हैं तो वो भी कर दें। कई लोग मेरे साथ चले, उन्होंने किया, उनकी ज़िंदगी कमाल है, जिसमें से एक उस्मान भी और बाकी भी कुछ लोग शामिल हैं। और जो लोग आज भी उन्हीं स्ट्रगल्स में हैं जो 2, 4, 5, 10 साल पहले थे, वो इसी तरह इसी स्ट्रगल में थक जाएंगे, अक जाएंगे, पक जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे और किसी चीज़ को एंड तक नहीं पहुँचा पाएंगे। और वो अगर खुश हैं भी तो वक्ती तौर पर, सिर्फ एक्साइटमेंट है उनकी, वो लंबी हैप्पीनेस उनको नहीं मिल सकती। तो साथ साथ अगर आप फिगर आउट करेंगे कि मेरी इनसिक्योरिटीज़, मेरे कॉम्प्लेक्सेस, मेरे चैलेंजेस क्या हैं और मेरा गिफ्ट इतना स्ट्रांग है, मुझे उस पे फोकस करना है और बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद हो जाएंगी, तो यही ज़िंदगी आर्ट का नमूना बन सकती है और आप आर्टिस्ट बन सकते हैं। और हर बंदा जो दूसरा छोटे मोटे आर्टिस्ट को देख के हम मतलब अजीब ऑ का शिकार हो जाते हैं, तो लोग आपको भी, सबसे बड़ा आर्ट ज़िंदगी बनाना है, अपनी ज़िंदगी को आर्ट का नमूना बनाना है, इससे रिजल्ट्स निकालना है, लोगों के लिए आसानी पैदा करना है, और वो उसी में आपकी आसानी है। जैसे रब कहता है तुम शुक्र अदा करो, मैं तुम्हारा शुक्र बढ़ा दूंगा। तो जितने भी शुक्रगुजार लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, उनकी ज़िंदगी को 4 चांद लगा दिए दूसरों ने भी, और एक्चुअली शुरू उन्होंने खुद किया था। तो ये वो पूरा प्रोसेस है जो कि एक्सप्लेन करना था इसी बहाने। जी उस्मान।
12: हाँ जी, आपका पिछले कोई जितनी देर से आप रेडियो शो में हो, कोई एक लिसनर जो आपको याद हो, मुझे जिसने कोई हट के बात की हो?
10: नहीं, हट के बात करने वाले काम है, लेकिन और अपना अपने पर्सनैलिटी लोगों की होती है, जब भी मैं 100% अलर्ट होता ना और चुप बैठा हूँ, तो इसका मतलब है आई एम ऑल ईयर्स। आपने कोई नई बात की है, आपने कोई नया काम किया, या कोई नया मशवरा दिया, या नई थाट लेके आए, या कोई ओरिजिनल थाट है आपकी, और आप जो, अगर मैं आपको 5 साल से जानता हूँ तो पिछले 5 साल वाली बातें आप नहीं कर रहे। अगर आप रोंदू हैं तो 5 साल से रो रहे हैं, परेशान हैं तो 5 साल से परेशान हैं, फाइनेंशियल इशूज़ हैं तो 5 साल से वही फाइनेंशियल इशूज़ हैं। आप यकीन करें, मेरे इर्द गिर्द लोग हैं जिनके फाइनेंशियल इशूज़ हैं, तो मैं जब उनको चीज़ें बताता हूँ ये करें वो ना करें, वो मेरी बात नहीं सुनते। वो पिछले 5, 10, 15, 20, 25, 30 सालों से आज भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का शिकार है। जिसने सुना, 3 से 5 साल में उसके कोई फाइनेंशियल इश्यूज नहीं। जो अपनी कंपनीज में कुछ चीज़ें चाहते थे, जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बात सुनी, समझी, अप्लाई की, उनकी ज़िंदगी आसान होगी। जिन लोगों को अपने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थे, जिन्होंने खुद पर काम किया, वो सब का सब दूर हो गया, सारे मसाइल दूर हो गए। लेकिन इसके लिए ईमान लाना पड़ता है, चीज़ों की थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है, साथ साथ चलना पड़ता है, रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स होती हैं कि मैं ये किया, ऐसे हुआ, ये नहीं समझ आ रहा, इसको कैसे करें। जब तक आप अपने आप को सयाना समझते रहेंगे लाइफ के सब्जेक्ट में, आप हमेशा फेल होंगे, क्योंकि आप या तो डॉक्टर हैं, हमें लोग कहते हैं जी आप, वो कहते हैं जी मैं डॉक्टर इमरान, तो वो डॉक्टर जब आप कहते हैं ना, तो इसका मतलब है आपके पास डॉक्टर होने की वजह से कुछ है, और बहुत कुछ आप कभी नहीं हासिल कर पाएंगे। तो जब आप इमरान कहेंगे, सिर्फ पीछे फौजी नहीं लगाएंगे, मतलब अपना रैंक नहीं लगाएंगे, या पीएचडी नहीं लगाएंगे, या बीए, मास्टर्स, पीएचडी, या ये सब लगाएंगे के अलावा, जब आप अपना नाम लेंगे, तो
13: तो आपको पता चलेगा मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, तो समझ आएगी। अक्सर लोग कहते हैं जी आप क्या करते हैं, उन्होंने कहा जी मैं डॉक्टर हूँ।

0: में इतनी मेरी लर्निंग हुई है जो मैं कभी भी नहीं सोच सकता था मैंने, क्योंकि हज़ारों लोगों से बात थोड़ी करता था हर साल में, और नए नए लोग, नए नए आइडियाज़ इस काम में होने की वजह से, इस काम को करने की वजह से जो मैंने सीखा, जो चीज़ें मैं करना चाहता था उसके लिए मैं परमानेंट, मेरे तमाम सारी सेंसेस जो हैं अलॉन्ग विद सिक्स सेंस, छः सेंस हर वक्त ऑन रहती हैं कि मैं कोई नई चीज़ देखूँ, सोचूँ, समझूँ, अप्लाई करूँ जो मैं अपने ऑडियंस के साथ शेयर करूँ। मेरा जहन हर वक्त कॉन्टेंट बनाता रहता है। मैं सिर्फ एक काम अब ज़िंदगी में कर सकता हूँ जब तक मैं बोल के लफ्ज़ आज़ादें तेरे कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल के लफ्ज़ आज़ादें तेरे कर रहा होता हूँ और उसी से ही मुझे सारे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। मैं जो बन पाया हूँ वो भी इसकी वजह से, और जो नहीं बन पाया वो भी इसी की वजह से। तो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, और लोगों ने आकर जो कंट्रीब्यूट किया है, जो इज़्ज़त अफजाई की है, जो प्यार मोहब्बत दिया है, जो दुआएं की हैं, बहुत सारे लोग ये वीडियो का जब कंटेंट सुनते हैं या ऑडियो का, वो कहते हैं हमने कभी ऐसा रेडियो शो या टीवी शो नहीं देखा, और स्पेशली जहाँ से हम लोग आ रहे हैं वहाँ तो लोग शेयर ही नहीं करते, प्योर जज्बात नहीं शेयर कर सकते, लोग क्या कहेंगे, कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ये क्या होगा, वो क्या होगा, आई वुड कम अक्रॉस लाइक दिस लाइक दैट, यही चक्रों में मेरा बनता है नहीं बनता, करना चाहिए, अपने अंदर की लड़ाइयों से ही लोग नहीं फारिग हो रहे, कॉन्ट्रीब्यूट उन्होंने क्या करना है। सो जो जो इससे बाहर निकला है उसकी ज़िंदगी में मैंने चेंजेस देखे हैं, जो जो इससे बाहर नहीं निकल पाया वो ना अभी और ना कभी, वो इसी तकलीफ में, परपेचुअल मिजरी जिसे मैं कहता हूँ, एक कांस्टेंट अजाब है जिसका हम शिकार हैं, और ये हमने अपने अंदर अपनी सोचों से पैदा किया है। अमीर तरीन लोग भी उतने ही कमज़ोर हैं, डिग्रियां लेने वाले भी उतने ही कमज़ोर हैं जितने जिनके पास डिग्रियां नहीं हैं। अमीर भी इस अजाब में, डर के अजाब में, और ऐसा करना और वैसा नहीं करना के बीच में फंसे हुए हैं, और गरीब भी इसी तरह ही हैं, कमाल करने वाले लोग भी हैं, बाकमाल और बेकमाल, अकलमंद कम अकल, सारे इसी चक्कर का शिकार हैं, हालांकि काम बहुत सिंपल था कि नहीं उस्मान?
1: हाँ जी, आपका आने वाले इस साल में या फिर आने वाले कुछ सालों में कोई ऐसा चीज, कोई ऐसी सरप्राइज जो अभी आप बताना चाहते हैं आज?
0: अभी तो ये रेडियो आजाद जो है ना, इन अगले 8 महीनों में रेडियो आजाद वो सब कुछ करेगा जो अभी तक रेडियो आज़ाद ने पिछले 14 साल में नहीं किया। हम जो प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, जो सिस्टम, अभी हम सिस्टम बनाने के प्रोसेस में हैं। जब एक चीज़ एक जगह तक जानी होती है तो उसका पूरा असेंबली लाइन ही और होती है, उसकी जो, उसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, उसके जो टैलेंट्स चाहिए होते हैं, जो लोग चाहिए होते हैं वो और होते हैं, जो सेट ऑफ बिलीव, सेट सिस्टम जो चाहिए होता है वो और होता है। उसी चीज़ को, ये बिल्कुल ऐसा, अगर आप एक बैलिस्टिक मिसाइल बनाते हैं और मैंने आप एक छोटा पहले बनाते हैं, वो 500 माइल तक या 1000 मील तक जाता है, तो उसका टोटली डिफरेंट सिस्टम होता है। उसी सिस्टम के अंदर बाकी चीज़ें डाल के उसकी पावर को एनहेंस कर दिया जाता है कि ये 2000-4000 मील तक आगे ये लॉन्च किया जा सके। बिल्कुल इसी तरह, या कोई भी सैटेलाइट जैसे होती है, जैसे आप चांद तक पहुँचें, ये डायरेक्ट नहीं पहुँच गया, बीच में छोटी छोटी एंडेवर्स करते हैं आप, ऑब्जेक्टिव्स करते हैं। तो पहले जो आपने देखा है, जो चीज़ ऊपर तक जाती है उसके फ्यूल के जो टैंक्स होते हैं ना, वो साथ साथ गिरते जाते हैं जो जो चीज़ यूज़ हो जाती है, क्योंकि एक्स्ट्रा वज़न नहीं चाहिए होता आपको। तो इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें, अब हम उस जगह पर हैं जहाँ पर आगे कितनी बड़ी फ्लाइट होगी और भरनी है हमने, वो अभी डिसाइड होगा। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। और बाकी जो फिल्म्स आने वाली हैं, जो इंशाल्लाह मैं काम कर रहा हूँ जिन चीज़ों के ऊपर, वो पाकिस्तान की एक फिल्म है जो आनी है, वो पता नहीं कब आएगी, क्योंकि पाकिस्तान में किए हुए काम का कुछ नहीं पता होता कब क्या होगा, वहाँ एनवायरमेंट ऐसा है, हर चीज़ अनप्रडिक्टेबल। जो फिल्म है, कुछ प्लेज है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल की एक दो चीज़ें आने वाली हैं, कुछ डोमेस्टिक लेवल की एक दो चीज़ें आने वाली हैं, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। उसके अलावा रेडियो आज़ाद के रेफरेंस से कुछ चीज़ें हैं जो कि वो जो भी इंटरनेशनल भी काम आएगा तो रेडियो आज़ाद में, और जो नेशनल होगा या डोमेस्टिक होगा वो भी रेडियो आज़ाद के ऊपर ही आएगा। काम हम सारे मिलकर, सारी चीज़ें रेडियो आज़ाद पर ही कन्वर्ज करती हैं। सो बहुत सारी नई चीज़ें, लेकिन एक दो सरप्राइजेज हैं इंशाल्लाह वो वक्त के ऊपर, और तब तक लोग, अभी तक हमारे लोगों ने जो सीखा है, हमने जो सीखा है उस सीख को इनकॉर्पोरेट करके हमने आगे कैसे बढ़ना है, इसके ऊपर हमारा फोकस ज़्यादा है, बजाय इसके कि हम नई नई चीज़ें दें। इस साल में हम एक कुछ चीज़ें ऐसी बनाना चाहते हैं जिसके बाद हम अक्सर आपको चीज़ें दे सकें, जैसे बाकी बहुत सारी चीज़ों में हम करते।
1: चलिए इंशाल्लाह आपके साथ है खान जी। तो सफ़र अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है, और हमने जो पेटी है ना वो सीट बेल्ट वो बांध ली है आपके साथ, तो देखें कहाँ तक जाते हैं आपके साथ।
0: बिल्कुल ठीक, हम ना क्योंकि 11-12 साल में बहुत कुछ बदल गया है, जैसे रेडियो आज़ाद की स्लोगन लाइन बदल गई, रेडियो आज़ाद जब शुरू हुआ था तो

0: वॉइस ऑफ द पीपल था, और उसके बाद इसको वे जो वॉइस मैटर्स किया गया है, रेडियो आज़ाद का लोगो और था, लोगो अभी आपको चेंज हुआ मिलेगा, रेडियो आज़ाद की जो आपको जो म्यूज़िक यू नो जो मिलता है आजकल रेडियो आज़ाद का जो आपको अच्छा लग रहा है, तराना जो है रेडियो आज़ाद का एंथम जो है वो बदल चुका है, रेडियो आज़ाद का पूरी कलर स्कीम बदल चुकी है। जब अगर आपने पहले 10-15 साल पहले देखा होगा, एक दीवार थी उसके ऊपर एक प्लास्टिक का बैनर हुआ करता था, स्किन लगी होती थी, वहाँ से फिर हमने ये चीज़ें शुरू की हैं, और उसके बाद अब रेडियो आज़ाद की पूरी कलर स्कीम, वीडियो क्वालिटी, चीज़ें बदल चुकी हैं, और शो बोल के अलावा आज़ाद ने तेरे बहुत चेंज हुआ है, हमारी टीम में बहुत सारी चेंजेस आई हैं, बहुत सारे नए चेहरे, नई आवाज़ें आप लोगों तक आई हैं, उसमें रेडियो आज़ाद की टीम ने भी इवॉल्व किया है कुछ। टीम को इवॉल्व करना एक मुश्किल काम होता है, क्योंकि हर इंसान जो है वो मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस के साथ लोग आते हैं, तो चीज़ें जो हैं वो जैसे देसी जो कल्चर होता है ना, हम यू कहते हैं ना, यू कैन टेक द बॉय आउट ऑफ द जंगल बट यू कांट टेक द जंगल आउट ऑफ द बॉय। हम लोगों को जिन चीज़ों के, जैसे किसी कंपनी में काम करते हैं, ये प्रोफेशन होता है, वहाँ हमारा टोटली और बिहेवियर होता है, इसीलिए मैं बिहेवियर के ऊपर इतने शोज भी करता रहता हूँ। लेकिन जब हम कोई घर में, हमारा टोटली और बिहेवियर होता है। मैं अपने घर के अंदर बिहेवियर चेंज करने वाला, जब तक आप का उठना ऑटोमेटिक वायरिंग जो आपकी है ना ब्रेन की, जब तक ये वायरिंग एक सिस्टम के ऊपर नहीं जाएगी, जैसे खुदा बनाना चाहता है इंसान को, वो उस वक्त तक उसका पोटेंशियल कभी सामने नहीं आएगा, इसीलिए हज़ारों साल लग गए इस काम में। वरना अगर हम खुद ये सिस्टम बना लेते, क्योंकि वो अभी सिस्टम के बीच में ठेकेदार आ जाते हैं, वो बनने नहीं देते सिस्टम को, वो अपनी अपनी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। जब तक आप एक चीज़ के साथ सिंसेरिटी के साथ फोकस नहीं करेंगे एक मेन गोल पे और उसके बाद छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स पे, तब तक बहुत सारी चीज़ें आ नहीं सकती। तो बहुत मैं ऐसा क्यों, क्योंकि मैं जिस घर में बड़ा हुआ था वहाँ मेरा फोकस किसी वजह से खान जी ने या मेरी कुछ वीकनेसेस ने उसको फोकस कर दिया, क्योंकि मुझे सर्वाइव करने के लिए भी कुछ बेसिक चीज़ें भी नहीं आती थी करनी। उसके बाद मैं जिस इंस्टीट्यूशन में गया वहाँ पर सब कुछ ही फोकस में था, और उसके बाद जो सारे सिस्टम बने हुए थे वो हर बंदे को अपने अपने काम और अपनी चीज़ों का और अपनी ज्यूरिसडिक्शन का और अपने रोल डिफाइन किए गए थे। लेकिन ये जैसे जैसे हम ये ज़िंदगी में हम आते हैं, क्योंकि घरों में भी ऐसा सेटअप नहीं है, इसलिए घरों में भी देखें पहली पीढ़ी स्ट्रगल करती है, दूसरी पीढ़ी भी स्ट्रगल अगर कर रही है ना, और तीसरी पीढ़ी भी अगर स्ट्रगल कर रही है, तो इसका मतलब है इस पूरी चीज़ में सब कुछ है, लेकिन इस पूरे तीन पीढ़ियों में एक भी अकल वाला इंसान पैदा नहीं हुआ। यानी कि अगर ये तीन पीढ़ियों का मतलब है कि आप थर्ड जनरेशन है आपकी, और अभी तक आप हैंड टू माउथ हैं, अभी तक आप फाइनेंशियल फ्रीडम आपको नहीं मिली है, इसका मतलब है पिछले तीनों जनरेशन के लोग, उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया। वरना तीन जनरेशन के अंदर सब कुछ बदल जाना चाहिए, आपके फाइनेंसेस बदल जाने चाहिए, आपकी सोच बदल जानी चाहिए। दादे का जो प्रॉब्लम था अगर वो फादर को भी, और फादर का प्रॉब्लम बेटे तक आ गया, तो इसका मतलब है ऊपर के दो बंदे निकम्मे थे, उन्होंने सेल्फिश होकर चीज़ें की, ब्रेन को इस्तेमाल नहीं किया, वो फियरफुल थे। इसीलिए आज तीसरी जनरेशन को भी वही तकलीफ उठानी पड़ रही है, हालांकि एक ने सही काम किया और दूसरा उससे आगे लेके चलेगा, तीसरा उससे आगे लेके चलेगा, रिले रेस की तरह, और हर बंदा अपनी अपनी लाइट होगा और अपनी स्पीड बढ़ाएगा आहिस्ता आहिस्ता, और फिर वो फाइनेंशियल फ्रीडम को भी पहुँचेगा। इसी तरह अगर ब्रेन जहालत में बंद था चौथी पीढ़ी का, फिर तीसरी का और फिर दूसरी का, और उसी तरह उसको लेके आए वो ज़िंदगी में, तो चौथी पीढ़ी भी स्ट्रगल और सफ़र करती रहेगी। इंटेलेक्ट को भी बढ़ाना आपका काम है जिस पीढ़ी में भी आप होते हैं। असल ऑनर करना अपने फोर फादर्स को, अपनी फैमिली को, अपनी ब्लड लाइन को, रब को सब करना होता है। सिस्टम बनाना अगलों के लिए, पिछलों के अजाब आगे ना चलाना, उसको रोक कर नई चीज़ें बनाना, नए काम करना, और कुछ नई चीज़ बना कर दे के जाना। इसीलिए मैं कितने लोगों को जानता हूँ, एक्चुअल में जब अगर आप उनकी बात सुने तो वो सिर्फ वाइनिंग कर रही होती हैं पिछले जो लोग होते हैं उनकी, दूसरी तीसरी जनरेशन की, क्योंकि उन्होंने इसका मतलब वो कह रहे हो नहीं रहे होते, लेकिन मतलब यही होता है कि हम आज तक इसलिए गरीब हैं कि पिछले ऐसे थे, हम आज तक इसलिए जाहिल और कम अकल रह गए कि पिछले ऐसे थे, उन्होंने ये नहीं किया, बल्कि उल्टा ये हम पर डालकर चले गए। रब आपसे ये नहीं पूछेगा पिछलों ने आपको क्या, आपने क्या किया। जब तक आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, आप कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे, और वही साइकिल जीते रहेंगे आप। और मैं किसी भी ऐसे साइकिल का हिस्सा नहीं बनता, मैं पिछले 10 सालों में मैंने जितने काम छोड़े, जितने बिजनेसेस छोड़े, जितने रिश्ते छोड़े, वो गोल गोल घूम रहे थे। जिस चीज़ के अंदर मैं हूँगा, मैंने अपने साथ ये डिसाइड कर लिया था, वो चीज़ आगे बढ़ेगी, फाइनेंशियली भी आगे बढ़ेगी, उसका इर्तिका होगा, वो एवोल्यूट करेगी, एवोल्यूशन में वो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता उसमें प्रोग्रेस होगी। अगर मैं किसी रिश्ते में हूँ तो रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होगा, वो डिटीरियोरेट या डेट्रीमेंटल होकर नीचे गिर रहा है, मुझे नहीं चाहिए। इसका मतलब है कहीं पर कोई काम ठीक नहीं हो रहा। जितने बिजनेसेस मैंने पिछले 5-7 सालों में, मैंने 2-3 बिजनेसेस में बिल्कुल मैं पीछे हट गया, क्योंकि वो उन बिजनेसेस ने आगे कहीं नहीं जाना था। आज भी वो बिजनेसेस या वहीं खड़े हैं या उससे बहुत नीचे चले गए, क्योंकि उसके लिए जो रिक्वायरमेंट थी, वो जो एलिमेंट्स थे, उनमें हार्मोनाइजिंग इफेक्ट नहीं क्रिएट हो सकता था। लेकिन जितने काम मैंने किए, जिसको मैंने नहीं छोड़ा, वो बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच गए। सो बिल्कुल, जब आप ये सोच लेंगे कि आप प्रॉब्लम का हिस्सा हैं या सोल्यूशन का, तो फिर आप सोल्यूशन के लोग ढूंढेंगे अपने इर्द गिर्द, और फिर आप देखें कमाल कैसे होते हैं। आप अपनी कुछ चीज़ें छोड़ेंगे, दूसरे लोग अपनी कुछ चीज़ें छोड़ेंगे, और थोड़ी थोड़ी एडजस्टमेंट्स के साथ जब चीज़ें बनेंगी, तो कोई बंदा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा होगा, थोड़ा थोड़ा सबको मिलेगा, और मिलकर हम बहुत ज़्यादा क्रिएट करेंगे। इन असूलों के ऊपर जितने रिश्ते मैंने पिछले 10 साल में बनाए, जितने बिजनेसेस के काम मैंने पिछले 10 साल में किए, सब ने कमाल किया, और उससे पिछले सालों की सारी चीज़ें मैं भूल चुका, बस मुझे सिर्फ एक्सपीरियंसेस याद हैं, क्योंकि उससे आइडियाज़ बनते हैं, उससे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, उससे आपका एक्सपोजर होता है, बार बार आप वही चीज़ें नहीं सीखते। मेहरबान हमारे साथ करते हैं, उनसे बात। वीडियो आज़ाद जी, रोन दिए जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम मैम,
1: आपको बहुत मुबारक हो 14 इयर्स, और आयशा जी को भी।
0: आपको भी बहुत मुबारक हो। आपके कितने साल हो गए रेडियो आज़ाद को तकलीफ देते देते?
1: So I think 7, yeah, I think 7 years हो गए।
0: ठीक है, और उसके बदले में रेडियो आज़ाद ने आपको कितनी तकलीफें दी?
1: नहीं सर, काफी सारी आसानी की है रेडियो आज़ाद ने।
0: आपको महसूस, आपकी जात के अंदर कोई फर्क महसूस होता है प्रोग्रामिंग और बाकी चीजें छोड़कर?
1: सर मुझे लगता है मैं थोड़ी इवॉल्व कर गई हूँ, एंड अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है चीजों की। Okay. और काफी सारी आई थिंक चेंजेस आई हैं, मुझे लगता है।
0: मजीद क्लैरिटी ऑफ आई है कुछ थॉट में?
1: हाँ जी, बहुत सारी। Okay.
0: कुछ चीजें आपने, कुछ चीजें आपने अपने लिए मजीद आसान की हैं जिंदगी की, सोचने के तरीके, काम करने के तरीके?
1: सर सोचने का तो पता नहीं, वो तो आपका शो सुन के हो जाता है, जब भी कोई कंफ्यूजन होती है, या आयशा जी की जो तस्नीम के साथ शोज होते हैं उनसे हो जाती है।
0: ठीक है,
1: बट ओवरऑल वैसे बहुत आसानी की है, आपके शोज से सीख के या आपसे पूछ के वो इंप्लीमेंट जो भी मैंने किया, अल्लाह का शुक्र है उससे, तो बहुत सारी चीजें।
0: जब आदमी किसी टीम का हिस्सा बनता है, जब आदमी किसी प्रोफेशनल कंपनी का हिस्सा बनता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन का, या काम करने वहां जाता है, अपना रोल प्ले करता है, आपने कभी ये सोचा है कि वहां पे काम करने से आपकी जात पे, आपके सोचने पे, आपके रिजल्ट्स पे, आपके आउटकम पे इतना फर्क आएगा? कभी सोचा था आपने कि किसी कंपनी को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी ग्रुप को ज्वाइन करने से मेरी जात में 7 सालों में इतने फर्क आ जाएंगे?
1: नहीं सर, नहीं सोचा था एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारी आप लोगों की ओवरऑल टीम में बहुत, आई थिंक आप जिस तरह से लोगों को गाइड भी करते हैं, अपनी टीम को भी गाइड करते हैं, और जैसे चीजें बताते हैं, दैट इज वेरी डिफरेंट। क्योंकि यूजुअली जैसा भी आप थोड़ी देर पहले भी कह रहे थे ना, लोग फोकस्ड होते हैं एक दो चीजों के ऊपर ही, पर्सनल ग्रोथ पे ज्यादा फोकस्ड होते हैं।
0: लेकिन आपको लेकिन क्या लगता है, वो जो पर्सनल ग्रोथ आपकी जब होती है ना, देखिए आप फर्ज करो एक काम करते हो, उसके अगर आपको थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, जैसे आपने मल्टीनेशनल, आप मेन स्ट्रीम में भी काम कर रहे होगे या आपने किया होगा, तो उसमें वो लोगों को कुछ चाहिए, हमने जिस काम के आपको पैसे दिए आप सिर्फ वो करें और घर जाएं, ऐसा ही है?
1: हाँ जी।
0: लेकिन कौन सा ऐसा काम है जिंदगी में, या कौन से कोई ऐसे रिश्ते आपने देखे हैं जिसमें रिश्ते के अंदर आप जाएं और आप इंसान इंसानी हालत में आना शुरू हो जाए?
1: हाँ जी, रेडियो देखती।
0: आपके इमोशंस जो हैं वो आपके काबू में आए और आप लॉजिकली चीज़ों को देखें और आप अपनी जात से बाहर निकलकर ऑब्जेक्टिवली भी चीज़ों को देख सकें।
1: हाँ जी,
0: ऐसे फायदे
1: आप लोग करते हैं।
0: हाँ, तो ऐसे फायदे आपने कहीं और, या आप किसी को जानते हैं या किसी और से आपने ये महसूस किया है कि मैं किन काम करने जाऊंगी और मेरे से सिर्फ मेरे वाला काम लिया जाएगा और बीच में मैं जहाँ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकूंगी इतना किया जाएगा, लेकिन उसके बदले मुझे इतना कुछ मिलेगा, ये कभी सोचा था आपने?
1: नहीं सर, और पर्सनल ग्रोथ और कलेक्टिव उसमें नहीं सोचा था।
0: और वो एक देसी जगह होगी? ये सो इस बात पे ऐसी हंसी हर बंदे की निकल जाती है कि देसी ग्रोथ आसानी और एक दूसरे के साथ ये, तो ये तो घरों में भी बहुत कम होता है, ऐसा ही है।
1: बिल्कुल ऐसे ही है।
0: तो अब क्या लगता है आपको, अगर आप वापस जाएं, कि अगर आप 7 साल पहले जिस वजह से भी आई होंगी या जैसे भी यू बम्प्ड इनटू रेडियो आज़ाद, अगर वो चीज़ आप, या फिर आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी शाय भी है और रेडियो का काम जो है, जैसे मेरी शाय है तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है, उसके बावजूद आपने ये स्टेप लिया और आप इसका हिस्सा बनी, तो आप कभी कभी सोचती हैं कि अगर मैं ना बनती तो मेरी, आपको क्या लगता है आपकी लाइफ में इस वक्त क्या होता और क्या ना होता, एनी आइडिया?
1: सेम लाइफ होती बहुत ही, आई थिंक जो जैसे मैंने अपनी लाइफ को पहले कभी छोटे होते हुए या किसी एक टाइम पे इन्वेजन किया था, अब मुझे लगता है वो वैसे ही है जो मुझे चाहिए थी। एंड सेकेंडली, अगर मैं नहीं आती तो ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। आप अपने बारे में जो सेल्फ डेवलपमेंट आप सिखाते हैं हमेशा, वो नहीं होता कभी भी। और बहुत सारी चीज़ों का, जिससे अभी आपके बहुत सारे कॉलेज भी कह रहे थे कि अल्लाह ताला से रिलेटेड और बाकी चीज़ों से रिलेटेड जो आपको इतना डराया जाता है हमारे कल्चर के अंदर, वो चीज़ें भी आप उनसे भी बाहर नहीं आते, नहीं आती मैं एटलीस्ट। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मैं एक्सपेक्ट नहीं करती थी, कि मुझे लगता था ये नॉर्म है हमारे कल्चर में और ये चीज़ें हमारी जैसे देसी उसमें ऐसे ही होती हैं। तो वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गई थी आफ्टर ज्वाइनिंग
0: तो
1: रेडियो।
0: इसका
1: आई
0: मतलब है सात
1: एम
0: साल
1: हैप्पी।
0: में आपकी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हुआ, उसके बाद आपकी खुशी का जो लेवल है, जैसे आप फील करती हैं अपने आप को वेर एवर यू आर मेंटली, उस पे भी कुछ बेहतर आपको लगता है, उसके अंदर कुछ स्टेबिलिटी और बैलेंस पैदा हुआ?
1: सर मुझे, मैं खुशी पे इतना फोकस नहीं करती, मैं अपनी सेल्फ कंटेंटमेंट पे ज्यादा फोकस करती हूँ। तो मुझे लगता है वो बहुत, जो मैं, जो मुझे चाहिए वो मुझे है मेरे पास। सर
0: आपके सुकून का जो लेवल है उसमें कोई फर्क पड़ा?
1: दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो मुझे मिल गई हुई है।
0: हाँ जी, तो क्योंकि जब आपको एक चीज़ मिल जाती है ना सुकून, जो अपने रब में देखा है, तो उसमें से बाकी जो लेवल्स हैं ना, उसका अगर आपको पता ना भी हो तो वो लेवल्स इंक्रीज हो रहे होते हैं। इसीलिए कंटेंटमेंट जो है, इत्मीनान कल्ब जिसे कहते हैं, दिल मुतमइन जिसके लिए जो है ना, वो हिंदी, क्योंकि आप आजकल जानो अरब हम ज़्यादा, मुतमइना जिसे कहते हैं ना, आप जब जब तक आप सुनना ना कहो ना, जब तक आप बरकाह ना कहो, तो लोगों को समझ नहीं आती, पता नहीं, तेल लगाने से हम बड़ा अवॉइड करते हैं खुद को। सो इन तमाम चीज़ों में बेहतरी हुई है। सो ये सुन के हमें अच्छा लगा कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ ज्वाइन किया, उसमें आपने सपोर्ट किया, उसकी वजह से आपकी ज़ात पे इतने अच्छा असर हुआ। अच्छा, आप लोग ये अक्सर सोचते या पूछते हैं, ये सब कुछ इसी को दिखाने बताने सिखाने समझाने से क्या होता है? इससे लॉयल्टी बढ़ती है इंसानों के अंदर, इससे लोगों को क्लैरिटी बढ़ती है, इससे लोग इमोशनली स्टेबल होते हैं, इससे लोग डिसाइड कर पाते हैं कि उन्होंने साथ रहना है कि नहीं रहना, इससे लोग आहिस्ता आहिस्ता जो प्रोग्रेशन होता है उनकी ज़ात के अंदर, जो प्रोग्रेसिव डिस्कवरी होती है अपनी इग्नोरेंस के बारे में, उस पर बड़ा अच्छा असर पड़ता है, इससे रिश्तों पर बड़ा अच्छा असर पड़ता है, इससे इंसान के अंदर अख़ुव्वत पैदा होती है, भाईचारा पैदा होता है, फ्रेटर्निटी सोरॉरिटी किस्म की फीलिंग आती हैं। एक्चुअल में आप किसी चीज़ से कनेक्टेड होते हैं, और जब आप उससे डिसकनेक्टेड होते हैं, ये तो आपको लगता है कि आप कोई चीज़ मिस कर रहे हैं, आप कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये तमाम चीज़ें ज़िंदगी में इसलिए की जाती हैं, ठीक है? और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोएम सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।

कम्युनिटी की आवाज है, बस एक ही आवाज है, आप समात फरमा रहे हैं इंस्पायर FM 105.1।

0: Assalamu alaikum. You have been listening to the Daily Imam Booster. Stay tuned to Inspire 105.1 FM for more inspiring talks and lectures.
1: अगर आप अपने इस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आज ही इंस्पायर एफएम की टीम से राब्ता कीजिए। फोन करने के लिए 01582481810 या फिर ईमेल कीजिए info@inspirefm.org। इंस्पायर एफएम, आपका अपना रेडियो स्टेशन।

0: think you'll enjoy this one.
1: आप लोगों को जिन स्टोरीज पसंद है यही मसला है इस कॉन का. जिन्नात के बारे में कुरान ने बात की है, थोड़ी सी जिन स्टोरी सुनते हैं, थोड़ी सी कुरान से जिन स्टोरी. अल्लाह ताला ने जब कुरान के नाजिल करने का फैसला किया, सातवें आसमान से ऊपर कुरान नाजिल होना शुरू हुआ, उसके बारे में थोड़ा तदब्बुर करते हैं. इसके बारे में ये जो कायनात है ना, पहला समा है, ये जो सितारे हमें नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ तक हमें पता चला है कि इस कायनात की, फिज़िकल यूनिवर्स की जो उम्र है फ़िलहाल तकरीबन 13.9 बिलियन लाइट ईयर्स, ये उम्र है इसकी. यानी आप जब आसमान में सितारे देखते हो तो वो जो रोशनी आप देख रहे हो ना सितारे की, उसको 13.9 बिलियन साल लगे हैं आपकी आंख तक पहुंचने में. 14 बिलियन साल उसको लगे हैं. आपको पता है रोशनी की स्पीड, उसकी रफ्तार क्या है, लेकिन उस रफ्तार के बावजूद वो इतना सफ़र करके आपकी आंख तक पहुंची है. शायद आपको अंदाज़ा हो ना हो, जब आप सूरज की रोशनी को देखते हो तो वो रोशनी आपकी आंख तक पहुंचने में उसको 8 मिनट लगते हैं. आप सूरज को नहीं देख रहे, आप सूरज को जो जैसे वो 8 मिनट पहले था वो देख रहे हो असल में, क्योंकि उसकी रोशनी को यहाँ तक आँख तक पहुँचने में 8 मिनट लग जाते हैं. तो आप अंदाज़ा करें सितारे कितने अरबों ही अरबों ही अरबों के ऊपर वो सितारे आपकी आँख तक पहुँच रहे हैं. ठीक है, तो आप तारीख को देख रहे हो. जब आप किसी सितारे को देख रहे हो ना, तो एक बहुत कदीम तारीख की तरफ आपकी नज़र जा रही है. अल्लाह ताला ने फरमा दिया, वलकद ज़य्यना समा दुनिया बिमसाबिहा, हमने सबसे निचला आसमान, कितने आसमान हैं, 7. अल्लाह कहते हैं सबसे निचला आसमान मैंने सितारों से मुज़य्यन किया. यानी जहां तक इंसान को सितारों का इल्म है, वो कौन सा आसमान है, पहला आसमान है. उसके बाद उसके मुकाबले में दूसरा आसमान है, जो रिवायत में पता चलता है इसके मुकाबले में दूसरा आसमान ऐसे जैसे ये एक अंगूठी हो और वो एक सहरा हो. उसके बाद तीसरा आसमान है, और उसके मुकाबले में जैसे दूसरा आसमान एक अंगूठी हो और तीसरा आसमान एक पूरा सहरा हो, और इसी तरह चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, और उसके बाद अर्श रब्बिना. कुरान आया है सातों आसमानों के ऊपर से. आप अंदाज़ा करें, कोई वाकया हुआ होता था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ने, काफिर ने आके कोई सवाल पूछ लिया, और वहां से जिब्रील को हुक्म मिला कि आप रसूल को ये आयत दें, तो आप ज़रा कंपेयर करें जिब्रील अलैहिस्सलाम की रफ्तार और लाइट की रफ्तार को. कहाँ से कुरान आ रहा है और कैसे आ रहा है, और फिर आप अंदाज़ा करें कि जो साउंड है ना, साउंड आवाज़ ज़्यादा तेज़ है रफ्तार में या रोशनी, रोशनी साउंड आवाज़ से तेज़, तो आप जेट भी है ना, जेट्स कैन ट्रेवल फास्टर दैन द स्पीड ऑफ साउंड. हम दुआ करते हैं, वो दुआ फौरन अल्लाह सुनता है और फौरन उसका जवाब देता है, उजीबु दावत दाई इदा दहान. अच्छा, इस आसमान में थोड़ी सी, क्योंकि ये आसमान तो कुछ भी नहीं है बाकी आसमानों के मुकाबले, इस आसमान में किसी हद तक अल्लाह ताला ने जिन्नों को थोड़ी खुली छुट्टी दे दी, तुम लोगों ने कुछ सैर करनी है तो कर लो, तो इस आसमान में कम अज़ कम उनको थोड़ा इधर उधर, चलो यार जुपिटर चलते हैं, चल तो वो कर लेते हैं. यहाँ पर इनको थोड़ा सा स्पेस ट्रैवल करने का लाइसेंस मिला हुआ है, वीज़ा मिला हुआ है इनको. अल्लाह ताला ने जब कुरान नाजिल करने का फ़ैसला किया सातों आसमानों के ऊपर से जिब्रील अलैहिस्सलाम के हाथ, तो उनके साथ एक पूरी फरिश्तों की फ़ौज तैयार की. जब कोई बहुत अहम डॉक्यूमेंट होता है ना, तो वो सिर्फ आप अपने बैग में डाल के ट्रेन में नहीं बैठ जाते, एक पूरी उसके साथ सिक्योरिटी डिटेल होती है, और एक पूरा एंटोराज जाता है, और फिर उसके साथ आगे भी फौजी पीछे भी फौजी, और फिर वो कारवान चलता है एक चीज़ डिलीवर करने के लिए, है ना. तो अल्लाह ताला ने कुरान में बताया मुताइन थम्मा अमीन, उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, और फिर वो कुरान लेकर आते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम, ठीक है। तो जब वो आ रहे थे तो अल्लाह ताला ने एक मामला किया जो यहाँ पाकिस्तान में बहुत होता है, उसकी मिसाल पाकिस्तान में बहुत होती है, कोई VIP आ रहा हो ना तो सड़कें बंद हो जाती हैं, सड़कें सारी बंद, लॉकडाउन, कोई इधर उधर नहीं हो सकता। अब जिन्नात की आदत थी कि पहले आसमान में क्या करते थे, घूमते फिरते थे, एकदम से ऊपर जा रहे हैं, आसमान बंद है, गार्ड खड़े हुए हैं, कोई नहीं जा सकता आसमान, सारे जमीन पे बैठो, दुनिया में बैठो सारे। अभी उनको आदत थी बाहर घूमने फिरने की, अब सारे के सारे जिन कहाँ फंसे हुए हैं दुनिया में, उन्हें पता नहीं ये लॉकडाउन हुआ कैसे, ये किस चीज़ का लॉकडाउन है ये, हम जब भी जाते हैं ऊपर हम पे शूटिंग होती है, हमें नीचे भेज दिया जाता है, हम जा ही नहीं सकते बाहर, अब दुनिया में कैद हो गए सारे के सारे जिन। अब वो जब कैद हुए, क्यों कैद हुए, क्योंकि क्या आ रहा है आसमान से, कुरान नाजिल हो रहा है, कुरान के नाजिल होने के लिए तमाम आसमान को लॉकडाउन कर दिया और जिन्नात जमीन में कैद हो गए कुछ अरसे के लिए। अब वो जब कैद हुए तो उनको थोड़ी बताया था कुरान नाजिल हो रहा है इसलिए तुम्हें लॉकडाउन किया जा रहा है, उनको नहीं पता कि क्यों हुआ ये लॉकडाउन, क्यों बंद किया गया है। तो जब ये लॉकडाउन हुआ तो उन्हें पता था यहां कुछ होने वाला है भाई, यहां कुछ तो होने वाला है, यहां पे हमें पता नहीं क्या होने वाला है लेकिन कुछ तो होने वाला है। तो उस पर उन्होंने तबसरा किया, ना जाने कहते हैं वह अन्ना ला नदरी, और हमें कुछ इल्म नहीं था, कुछ क्लू नहीं था हमें, अशर्रुन उरीदा भी मनफिल अर्दी अम अरादा भी हिम रब्बुहुम रशदा, क्या कोई शर यानी कोई बहुत बड़ा नुकसान, कोई बहुत खराब काम होने वाला था, जो खराब काम की नीयत थी अहले ज़मीन के लिए, या उनका रब उनके लिए कोई हिदायत चाह रहा था, हमें नहीं पता था कि इनमें से क्या, या तो कोई हिदायत आने वाली है या इस दुनिया को बर्बाद किया जाने वाला कोई बहुत बड़ा शर इस तरफ आ रहा है, हमें नहीं पता था। ये ताबीर है अशरुन उरीदा बिमन फिल अर्दी अम अरादा बिहिम रब्बुहुम रशदा। अब गौर से सुनो और आप मुझे बताना, अगर मैं कहूँ खराबी का इरादा किया गया, खराबी का इरादा किया गया, और फिर मैं कहूँ अल्लाह ने अच्छाई का इरादा किया, पहले तबीर क्या कही थी मैंने, खराबी का इरादा किया गया, जो पहली ताबीर है उसमें मैंने अल्लाह का जिक्र किया नहीं, किसका इरादा है उसका जिक्र किया नहीं, दूसरी में जब मैंने कहा अल्लाह ने अच्छाई का इरादा किया, अल्लाह का जिक्र किया, जिन्नात को उस वक्त से भी अल्लाह ताला के बारे में बात करने की तमीज़ है, बुराई के लफ्ज़ के साथ अल्लाह ताला को मंसूब नहीं करेंगे, कहेंगे क्या कोई बुराई थी जिसका इरादा किया गया था ज़मीन वालों के लिए, अल्लाह ताला का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, अच्छाई की हिदायत की बात आई, क्या कहते हैं अम अरादा बिहिम रब्बुहुम रशदा, या फिर उनके रब ने उनके लिए कोई हिदायत का इरादा किया था, किसी हिदायत का इरादा, सुभानअल्लाह, हर चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से है, लेकिन अल्लाह ताला के मामले में अदब और तमीज़ का एक तकाजा है, कुरान सिर्फ मालूमात नहीं देता अल्लाह ताला के बारे में बात करने की तमीज़ भी सिखाता है। फ़लसफ़ी जो है ना वो खुदा के बारे में जैसे चाहे बात करे, क्या खुदा कोई ऐसा पत्थर उठा सकता है जो किसी ना जो उठाने के लिए नामुमकिन हो, या कोई ऐसा पत्थर बना सकता है जिसको वो ना कभी ना उठा सके, इस तरह की बातें वो बकवास करते हैं अल्लाह ताला के बारे में, क्यों, क्योंकि अल्लाह ताला के बारे में वो सिर्फ एक फ़लसफ़ी कॉन्सेप्ट के लिहाज से बात कर रहे हैं, उनको अल्लाह ताला के मामले में कोई लिहाज, कोई अदब, उनकी अजमत का कोई बिल्कुल एहसास नहीं है। लेकिन जिन्नात को ना मालूम होते हुए भी इतना एहसास है कि कोई ख़राबी की बात करेंगे तो साथ में किसका लफ्ज़ इस्तेमाल ना हो, अल्लाह ताला का ये लफ्ज़ इस्तेमाल ना हो। इसकी एक और मिसाल देखते हैं, अल्लाह ताला हमें सिखा रहे हैं वइदा अनअमना अलल इंसान, जब हम इंसान पर नेमत करते हैं अअरदा वना बिजानिबिही, वो अपनी पीठ मोड़ लेता है और बड़ा अकड़ जाता है अपनी साइड पर, बड़ा बन जाता है जैसे बहुत कमा लिया उसने किया, अल्लाह कहते हैं हमने इनाम किया था, जब कहा हमने इनाम किया तो किसका जिक्र है इसमें, अल्लाह ताला का। वइदा मस्सहु शर्रु क्या है ना यूसा, जब शर उसको छुए तो बिल्कुल मायूस हो जाता है। जब कहा शर छुए, किसका जिक्र नहीं है? अल्लाह ताला का जिक्र हटा दिया, क्योंकि शर के साथ अल्लाह ताला को नस्ब नहीं किया जाएगा। अदब का तकाजा है, जो भी इंसान को छुएगा वो अल्लाह ताला की तरफ से, बुरा हो या अच्छा हो। लेकिन यहां सिर्फ मालूमात नहीं बताई जा रही, तमीज सिखाई जा रही है, अदब सिखाया जा रहा है। इसी तरह अलम तरा कैफा, ओ ये तो इसके बाद ब्रेक दूंगा आपको, इसके बाद एक और फिर ब्रेक दूंगा। असल में एक्चुअली मैं मिसाल ही देता हूं आपको। फर्ज करें कि आप जुमे के खुतबे के लिए गए, लेकिन आप देर से पहुंचे, ठीक है? तो देर से पहुंचे तो जहां जूते रखे जाते हैं ना, वहां आपको जगह मिली नमाज पढ़ने की, तो आपको खतीब नजर नहीं आ रहा, ठीक है? आप बाहर हो मस्जिद में, खुतबा तो शुरू हो गया लेकिन नजर नहीं आ रहा आपको। खुतबा हुआ तो बहुत ही जबरदस्त खुतबा, ऐसा खुतबा आपने कभी सुना ही नहीं जिंदगी में। आपके जहन में क्या बात की है इस बार, कौन था यह बंदा, ओहो मैं जाके इनसे मिलूं, इनसे हाथ मिलाऊं, अपने बच्चे के सर पे फूंक पड़वाऊं, कुछ करूं, क्योंकि आप खुतबे ने आपको बहुत मुतासर किया। अंदर जो मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं ना, उनको खतीब नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और हुआ ये कि जो अंदर था ना, वो एक लड़का था 16 साल का, उसने फटी हुई जीन्स पहनी हुई थी, उसने बेसबॉल हैट पीछे लगाई हुई थी, टी शर्ट पहनी हुई थी, उसने जाके खुतबा दिया। तो जो अंदर खुतबा सुन रहे हैं वो तो किसी तरह सोच रहे हैं इसको किस तरह कत्ल करेंगे, या ये नमाज तो पता नहीं कबूल नहीं होगी, अब इसके एवज में हमें कितने बकरे ज़बह करने पड़ेंगे इसको ज़बह करने के बाद। एक तरफ जो बाहर सुन रहा है बात, वो कह रहा है माशाल्लाह क्या हस्ती, क्या अजीम हस्ती आई है, और जो अंदर बैठे हैं वो कह रहे हैं किस शैतान को लगा दिया सामने। बात एक ही है लेकिन दोनों के तासुरात में फर्क है कि नहीं? क्यों, क्या फर्क है? सवाल ये है कि क्या फर्क है? हाँ, एक को पता है कौन बोल रहा है और एक को नहीं पता कौन बोल रहा है। एक का सारा जहन, उसकी सारी की सारी सोच बात पर है, कलाम पर है। दूसरे की सारी सोच, सारी जहनियत किस तरफ है? मुतकल्लिम पर, बात कौन कर रहा है उस पर है। फर्क पड़ता है कि नहीं? देखिए इंसान जो है ना वो अजीब मखलूक है, हमें सिर्फ बात से असर नहीं होता, बात कौन कर रहा है उससे भी असर होता है। कुछ लोग ऐसे हैं वो मुंह खोलने से पहले ही आपको पता है इसकी बात तो मैंने सुननी नहीं है, जैसे आपकी कजन, आपकी बहन, कभी कभी आपके फादर, इधर आओ जरा बात करनी है, वो जो भी कह दे नहीं सुनना। आप फर्ज करें बिजनेस चला रहे हो, आपका बेटा अभी अभी अकाउंटिंग पढ़ के फारिग हुआ है, आपको बिठा के कहता है अब्बा जान ये जो हम टैक्स इस तरह फाइल कर रहे हैं ना, इस तरह नहीं, मेरे ख्याल से ये स्ट्रैटेजी बेहतर होगी। आप बताएंगे शक्ल देखी अपनी, तुमने तेरे डायपर मैच चेंज करता था, मुझे अकाउंटिंग तू सिखाएगा, 25 साल से मैं बिजनेस चला रहा हूँ, तू अकाउंटिंग सिखाए। फिर आपका दोस्त आपको कॉल करता है और वही नसीहत जो आपके बेटे ने की थी वो उसने की। हाँ बात तो ठीक है यार, सही है, ट्राई करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहाँ से आ रही है? बेटे से। तो बेटे उसकी क्या, उसका क्या मकाम, उसकी क्या हैसियत? यानी कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी की बात को ज़्यादा काबिल कबूल समझते हैं उसको सामने, उसको मद्देनज़र रखते हुए, और कभी कभार किसी की बात को हम रद्द कर देते हैं क्योंकि वो उससे आ रही है। बात सही हो गलत हो उससे मतलब कम हो जाता है, किससे आ रही है उससे मतलब ज़्यादा हो जाता है ना? लेकिन अगर कोई हक का तालिब है, किसी को हक में दिलचस्पी है, तो हक का तकाजा क्या है? अगर कोई काफिर, कोई मुल्हिद, कोई हिंदू, कोई ईसाई, कोई यहूदी, कोई फासिक, कोई शराबी, कोई भी अगर बात हक कर रहा हो, तो कम से कम बात की हक तो हक हक ही रहेगा। और अगर कोई बहुत इज्जतदार, जिसकी जिसका मैं वकार करता हूं, इज्जत करता हूं, लिहाज करता हूं, जितना भी लिहाज कर लो, अगर बात गलत कर रहा है, बात की हद तक तो गलत गलत ही रहेगा ना। यानी हक के मामले में इंसान जो भी हो, कैसा भी हो, गलत गलत है और सही सही है। लेकिन हकीकत में क्या होता है, हमारे लिए ऐसी तमीज़ करना आसान नहीं होता, हमारे अंदर किसकी बात सुन ली। बल्कि मुस्लिम कल्चर में खासकर फलाने की बात नहीं सुनना, फलाने की बात नहीं सुनना, फलाने का ये नहीं करना, यानी बच के रहना, अगर इस किस्म के लोगों की बात सुनोगे तो गुमराह हो जाओगे, ऐसे की सुनोगे तो ये हो जाएगा, वैसे की सुनोगे तो वो हो जाएगा, इन लोगों की सुना करो। यानी पहले देखो हुलिया, अगर ये हुलिया फिट आ रहा है सुनने वालों का तो फिर इनकी बात हर बात सुन लो, और अगर फिट नहीं आ रहा तो इनकी हर बात रद्द कर दो। ये तरीक़ाकार है हमारा। लेकिन इस तरीक़ेकार से किसकी नफ़ी, किस चीज़ की नफ़ी होती है? हक बात। हक बात हो सकता है कि किसी ने 99% गलत बात की है और 1% सही बात की है, मैं उसकी 99% बातों का इनकार तो कर दूं, उसने जो 1% हक बात की है उसको मुझे मानना पड़ेगा, यह हक का तकाजा है। अच्छा, कुरान जब नाजिल हुआ, कुरान की एक और बात है, हम अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं। जब हमसे कोई कहे अल्लाह ने ये कहा, मुसलमान से कहे अल्लाह ने ये कहा, तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं और हम उस बात को कबूल करने को ज़्यादा आमादा हो जाते हैं, क्योंकि कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। काफिर से कहो अल्लाह कह रहा है, पहले तो वो बात सुनने को तैयार था, जैसे ही अल्लाह का नाम लोगे क्या कहेगा? रहने दो, तुम रखो अल्लाह, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे पास, मुझे तुम्हारे अल्लाह की बात नहीं सुननी। समझ में आ रही है बात? इज़ एवरीथिंग ओके? ओके ओके। तो खैर, ये चीज़ जो है ना, कि हम अहले ईमान होने के नाते अल्लाह की बात सुनने पर ज़्यादा आमादा हैं, और अहले कुफर अल्लाह का नाम सुनते ही कम आमादा है। यही बात है ना? तो कुछ मकामात हैं कुरान के जहाँ अल्लाह ताला ने हमसे बात की, कहा ضرب الله مثلا, अल्लाह ने मिसाल दी, अल्लाह ने मिसाल दी। जो अहले ईमान हैं उनके कान ज़्यादा खुले या नहीं? ज़्यादा खुले। लेकिन मक्की कुरान में जब कुरान नाजिल हो रहा था तो जैसे ही कहो अल्लाह ने कहा है, काफिर क्या करते थे? शुरू से ही ट्यून आउट कर देते, यानी अल्लाह का नाम सुना, अब बाकी नहीं सुनना मुझे। तो अल्लाह ताला ने क्या किया? या अय्युहन्नासु बुरिबा मसलन, लोगों एक मिसाल दी जा रही है। ये नहीं कहा अल्लाह एक मिसाल दे रहा है, अब क्या कहा? एक मिसाल दी जा रही है। किसका जिक्र नहीं है? अब अल्लाह ताला का जिक्र नहीं है। क्यों नहीं है? अब कुछ सुनने पर वो जो पहला बैरियर था ना, कि अल्लाह का नाम आ गया तो मैं सुनूंगा नहीं, उस पे से फोकस हटा के कलाम पे फोकस कर लो, पहले कलाम पे फोकस कर लो। ओके, तो ये है या अय्युहन्नास दुरिबा मसल, इन छोटी छोटी तब्दीलियों से कलाम की साइकोलॉजी में बहुत फ़र्क आता है। इसी से मुतालिक एक मिसाल है जो इसमें नहीं है नोट्स में, लेकिन मैं आपके सामने पेश करके फिर आपको ब्रेक देता हूँ। वो यह है मूसा और खदर अलैहिस्सलाम का किस्सा सूरतुल कहफ में। उसमें तीन सफ़र हैं, तीन स्टॉप्स हैं। तो पहले स्टॉप में किश्ती थी जिसकी कुछ उसको कुछ ख़राब किया गया, दूसरे में कत्ल हुआ बच्चे का, और तीसरे में एक दीवार थी जिसको जिसकी मुरम्मत की गई। ठीक है। अच्छा, बाद में जब उनको ये बात समझ नहीं आई तो मूसा अलैहिस्सलाम को समझाया गया कि असल में क्या हो रहा था। तो पहली किश्ती के बारे में वो कहते हैं फअरदतु अन अईबहा, मैं चाहता था कि इसमें ऐब डाल दूं। खतर क्या कहते हैं? मैं चाहता था कि इसमें ऐब डाल दूं। किसकी तरफ इरादे को नस्ब किया है, मंसूब किया है? अपनी तरफ, अपनी तरफ। आखिरी हिस्से में दीवार गिरनी थी और दीवार की मुरम्मत की, कहते हैं अरादा रब्बुका अन यब्लुगा अशुद्दहुमा व यस्तखरिजा कंज़हुमा रहमतन मिन रब्बिक, तेरे रब का इरादा था कि ये बाद में जाके अपना खजाना निकाल लें। पहले किस्से में, दूसरे को मैंने भी स्किप किया है, पहले किस्से में क्या कहा था? मेरा इरादा था कि मैं ऐप डाल दूं। आखिरी किस्से में क्या कहा है? तेरे रब का इरादा था कि ये, क्योंकि पहले किस्से में ऐप का जिक्र है, ऐप के साथ अल्लाह ताला का नाम मुनासिब नहीं लगता, उसने कहा, उन्होंने कहा मेरा इरादा था कि मैं ऐप डालूं। आखिरी किस्से में मुरम्मत है, इसलाह की जा रही है दीवार की, तो वहाँ اپنے اوپر اصلاح کو منسوب کرنے کے بجائے کس کی طرف منسوب کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. ارادہ ربک ان یبلغ. اب رہ گیا بیچ کا مسئلہ. بیچ میں فادر صالح سمرائی کہتے ہیں یہاں پر دو کام ہوئے, ایک تو ہوا کہ ایک بچے کا قتل ہوا اور دوسری طرف ایک اور بچے کی پیدائش ہوئی, تو بظاہر ایک برا کام ہوا اور ایک اچھا کام ہوا. ویسے تو اللہ جو بھی کرتا ہے خیر ہوتا ہے, ہماری نظر کے اعتبار سے ایک چیز بری لگی اور ایک چیز اچھی لگی. وہاں کہا اردنا, ہم نے ارادہ کیا, ہم نے ارادہ کیا, ہم جمع, تو یہ ہم کون ہوئے؟ اس کے بعد کہا ان اراد فاردنا ان یبدلہما ربہما, ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا رب اس کو ریپلیس کر کے اس کی جگہ پہ کسی اور کو, کسی ایک اور اولاد کو ان کو دے دے. تو جو تبدیل کرنے کی بات ہوئی وہ رب کی طرف منسوب ہو گئی, تو باقی کس کے لیے رہ گیا؟ یعنی قتل کا کس کے لیے رہ گیا؟ خضر کے لیے. یعنی ضمیر کا تعلق, ضمیر کا استعمال ہو رہا ہے ادب کے اعتبار سے. ویسے تو کیا سب اللہ تعالیٰ نے, لیکن ہمیں سکھایا جا رہا ہے تعالیٰ کے بارے میں بات کیسے کی جاتی ہے.
0: Subscribe now to the Bayana YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Norman Ali Khan. Coming up next time on Akhri Moajza.
1: Kisi ne bahut acha sawal pucha. I think aap sabko uska fayda hoga. Maine kaha Ibrahim Alaihis Salam ne ye kaha, Musa Alaihis Salam ne ye kaha, Firaun ne ye kaha. لیکن ان سب کی زبانیں عربی نہیں تھیں, بلکہ قرآن اکثر لوگوں کی جو بات بتا رہا ہے ان کی اکثریت کی زبان عربی نہیں تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ان کی باتوں کا ترجمہ کر رہا ہے. فرعون عربی میں نہیں کہہ رہا تھا, اپنی زبان میں کہہ رہا تھا, قرآن نے اس کا ترجمہ کیا. زکریہ علیہ السلام اپنی زبان میں, عبرانی زبان میں کہہ رہے تھے, قرآن نے اس کا ترجمہ کیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کے ترجمے کرنے میں اور انسان کے ترجمے کرنے میں کیا فرق ہے؟
2: حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا موسى بن ابی عائشة قال حدثنا سعید بن جبیر عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه له في صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. Ibn Abbas, in the explanation of the statement of Allah, move not your tongue concerning the Quran to make haste therewith. Said Allah's Messenger, used to bear the revelation with great trouble, and used to move his lips quickly with the inspiration. Ibn Abbas moved his lips saying, I am moving my lips in front of you as Allah's Messenger used to move his. Said moved his lips saying, I am moving my lips as I saw Ibn Abbas moving his. Ibn Abbas added, so Allah revealed, move not your tongue concerning the Quran to make haste therewith. It is for us to collect it, and to give you, O Muhammad, the ability to recite it, the Quran. Which means that Allah will make him, the Prophet, remember the portion of the Quran which was revealed at that time by heart and recite it. The statement of Allah, and when we have recited it to you, O Muhammad, through Gabriel, then you follow its Quran recital, 75.18, means listen to it and be silent. Then it is for us, Allah, to make it clear to you, 75.19, means, then it is, for Allah to make you recite it, and its meaning will be clear by itself through your tongue. Afterwards, Allah's Messenger used to listen to Gabriel whenever he came, and after his departure, he used to recite it as Gabriel had recited it.

तो उसके बाद दूसरी दुआ हुई। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर दुआ में फ़र्क क्या हुआ? पहली दफ़ा कहते हैं वर्जुक अहलहू मिन अस-समरात, इसको एक पुर अमन शहर बना दें और इसके रहने वालों को हर तरह के फल खिलाएं। मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, उनमें से जो भी अल्लाह पर ईमान लाए, आखिरत पर ईमान लाए, उन सबको अल्लाह ताला जो है वो फल खिलाए। वो भी एक अलग सेशन बन जाएगा, लेकिन मुख्तसर सी मैं आपके सामने बात रखता हूँ। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह दुआ की ना, तो असल में इससे पहले बात थी कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं आपको तमाम इंसानियत का इमाम बना रहा हूँ, इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, तमाम इंसानियत के इमामा बन गए। उनको फिक्र हुई, वो फौरन कहते हैं वमिन ज़ुर्रियती, मेरी औलाद और उनकी औलाद और उनकी औलाद का क्या होगा, मेरी आने वाली नस्लों के बारे में, मैं तो इमाम बन गया, मेरी खैर है, बाकियों का क्या होगा। वमिन ज़ुर्रियती, अल्लाह ताला आगे से कहते हैं नहीं, बाकी सबकी ज़मानत नहीं दे रहा मैं, ला यनालु अहदिल ज़ालिमीन, ज़ालिमों के बारे में मेरा वादा नहीं पहुँच, ज़ालिमों तक मेरा वादा और मेरी गारंटी नहीं पहुँचती। यानी जवाब उनको नहीं में किया गया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ हिम्मत नहीं हारे, फिर पूछा, जब काबे की तमीर कर रहे थे, फिर पूछा इसको एक पुरअमन शहर बना दें, और किसके लिए? जो अल्लाह पर और उसकी आखिर और आखिरत आखिरी दिन पर ईमान रखता हो। यानी इशारे में कह दिया, या अल्लाह मेरे जो बच्चे अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे और आखिरत पर ईमान नहीं लाएंगे, उनकी नस्ल अगर मुनक़ते भी हो जाए तो खैर है, खाना खिलाना ईमान वालों को, अमन में रखना ईमान वालों को। मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, क़ाला वमन कफ़रा फ़हु मत्तिउहु क़लीलन, अल्लाह ने जवाब दिया नहीं, जो कुफर करेगा उसको भी मैं मज़े कराऊँगा, थुम्मा अत्तर्रुहु इला अज़ाबिना, फिर मैं उसको घसीट के ले जाऊँगा अज़ाब, आग के अज़ाब की तरफ, व बिसल मसीर। दो दफ़ा कोशिश की इब्राहिम, पहले कोशिश की पूरी औलाद शामिल हो जाए, अल्लाह ने कहा नहीं, ज़ालिमों को नहीं, कोई ज़मानत नहीं है। फिर तो दोबारा इशारे में कोशिश की, बस अहले ईमान को खिला दें, पिला दें और उनको हिफाजत में रखें। अल्लाह ने कहा नहीं, काफिरों को भी मैं खिलाऊंगा। अब दोबारा हम फिर भी हिम्मत नहीं आ रहे, फिर कहते हैं रब्बना तकब्बल मिन्ना, जब इस्माइल के साथ काबे की तमीर कर रहे थे तो कहते हैं कम अज़ कम हम दोनों में से तो कबूल कर लें, पूरी औलाद नहीं तो कम अज़ कम मेरे साथ जो अभी औलाद है उसको तो, उसकी तो ज़मानत दे दें। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक, हम दोनों को तो अपने लिए मुसलमान रख मेरे रब, व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, और हमारे आने वाली नस्लों में से कम अज़ कम एक उम्मत मुस्लिमा तो रहने दे, कम अज़ कम सारों की तो ज़मानत नहीं है ना, तो अब निगोशिएशन हो रही है। व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना, अच्छा अब एक उम्मत मुसलमान रहे उसकी ज़मानत क्या होगी, एक रसूल तो भेज दें। रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूलम मिनहुम, वो उन्हीं आयात में है, उनमें से एक रसूल भेज दें जो आपकी आयात सुनाएगा उनको। ये किसके लिए दुआ थी? रसूलल्लाह के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक और बेटे भी हैं, इसहाक। इसहाक खुद नबी, इसहाक के बेटे याकूब वो भी नबी, याकूब के बेटे यूसुफ वो भी नबी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कुल्लमा हलका नबीयुन खलफा नबीयुन, जब भी बनी इसराइल में से एक नबी मरा दूसरे ने उसकी जगह ले ली। हर जनरेशन में इसहाक की औलाद में नबी नबी नबी नबी नबी नबी नबी ईसा अलैहि सलाम तक आते रहे मुसलसल। कफ़ैना अला आसारिहिम, उनके तो एक के बाद दूसरा जैसे जंजीर के लिंक होते हैं ना, इस तरह उनके अंबिया आते रहे मुसलसल मुसलसल मुसलसल। दूसरी तरफ उनकी औलाद है इस्माइल, बड़ी औलाद उनकी इस्माइल है, उनके लिए दुआ करते हैं उनके लिए एक रसूल भेज दें, रसूल अनमिन हो, रसूल अनमिन हो। दूसरी तरफ तो अल्लाह ने खुद ही से दिया, इस औलाद के लिए एक रसूल की दुआ मानी मांगी, और चार से ज़्यादा हज़ार, हमें नहीं पता कितने हज़ार साल, 5,000 साल 10,000 साल हमें नहीं मालूम कितने हज़ार साल बाद अल्लाह ने वो दुआ कबूल की और किसको भेजा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। या रब, ये बात कुरान को समझने के लिए एक बुनियादी हैसियत रखती है कि हमारे रसूल असल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का जवाब है। असल में हमारे रसूल को समझने के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शख्सियत को समझना बहुत ज़रूरी है, सीरत को समझने के लिए सीरत इब्राहिम को समझना बहुत ज़रूरी है, कुरान के मिशन को समझने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मिशन को समझना बहुत ज़रूरी है। इनका एक आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है, बहुत ही गहरा ताल्लुक है। उसकी मैं आपको अभी थोड़ी सी मिसाल दूंगा, छोटी सी। इस्लाम में कितने बुनियल इस्लामु अला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है?